are listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive Geo.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

Olive 106.3 FM Geo Bindas.

106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रख कर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
2: नीना गुप्ता,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
3: ऑलिव सुनो।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Cool Song.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
1: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी एग्स,
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: मैं हूँ सारिका।
4: रेडियो
3: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो
4: ऑलिव 106.3। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ऑलिव, नंबर वन।
4: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए. शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स. अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स. इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं. वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग.
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: cool song.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: रेडियो ऑलिव, आवर नंबर वन।
2: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Here we go.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

सैटरडे आ गया है और अगर आज आपका सवाल है कि घर में बैठें या बाहर निकलें, तो दोहा में आज कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे खास और सबसे प्यारी प्यारी चीजें आज आपको बताने वाली हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, वेरी गुड मॉर्निंग। आई नो सैटरडे इज मतलब ऑल अबाउट लेजीनेस। कभी कभी लगता है कि यार घर के काम निपटा लेते हैं, कल से ऑफिस जाना है। कभी कभी लगता है नहीं यार आराम करते हैं, और कभी लगता है कि यार कितना कुछ चल रहा है पूरे कतर में, तो वो सब भी एक्सप्लोर करना है। सो सबसे खास है कि आज सोहेल इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कनरी एग्जीबिशन जो है उसका आखिरी दिन है। कटारा में ये चल रहा है। एग्जीबिशन में ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और कतर की हेरिटेज से जुड़ी बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी, यू विल लव इट। इसके अलावा शीश और फिनिक्स गेम्स भी चल रहे हैं और कतर क्लासिक स्क्वैश भी शुरू हो चुका है। यानी सैटरडे सिर्फ ब्रंचेस और मॉल का नाम नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आज फ्यूचर फैशन डिजाइनर वर्कशॉप भी है, जिसकी बात मैं थोड़ी देर बाद करती हूं। सो आज का सवाल आपसे यह है कि अगर आपको आज सिर्फ एक आउटिंग चुननी हो तो आप क्या चुनोगे? कल्चर, स्पोर्ट्स, फैशन या बस कुछ खाना पीना और थोड़ा सा घूमना फिरना? व्हाट्सएप पे अपना सैटरडे प्लान जो है वो बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सो फैशन ना सिर्फ बड़े डिजाइनर और फैशन वीक की दुनिया नहीं है, कभी कभी एक बच्चा भी कपड़े का एक टुकड़ा देखकर सोच सकता है कि इसमें कुछ नया बना सकता हूँ। आज पाक हयात में फ्यूचर फैशन डिजाइनर्स का एक फर्स्ट चेक इन नाम का एक खास वर्कशॉप चल रहा है। भाई कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर गए हैं। द कटिंग स्टूडियो और पाक हयात दोहा की ये हैंड ऑन एक्टिविटी जो है ये 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार आजकल के बच्चे कितने कुछ करने लग गए हैं, फैशन डिजाइन, फैब्रिक, टेक्सचर, कलर, प्रैक्टिकलिटी, मतलब इनको सब पता है। और मैं सोच रही थी कि हम जब 12 साल के थे या मतलब 7 से 12 के बीच में थे तो बस कुछ नहीं आता था मुझे। ये वर्कशॉप आज दिन में है दोपहर 2 से 6 के बीच में। और हर बच्चा ना इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं होता, किसी को कलर्स समझ आते हैं, किसी को म्यूजिक, किसी को स्टोरीज, किसी को क्लोथ्स। सो क्रिएटिविटी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो है नहीं, कई बार वही आपकी सबसे बड़ी स्किल बन जाती है। सो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को फैशन डिज़ाइन करना है तो उन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा कि यार मम्मी ये बहुत प्यारा लगता है, या आपसे बोला कि ये कितने अच्छे कपड़े पहनता है, ऐसे अगर बातें वो करते हैं तो उनको ऐसे एक्सपोजर मिलने चाहिए। बाय द वे, हो सकता है कि अगला जो मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची है वो आप ही के घर से हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो विद मजराती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

किताबों के बाद और वीकेंड के साथ, मतलब ये तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। वार्म और बिल्कुल वीकेंड मूड वाली किताब द शुगर मैपल इन, लॉरा ब्लूम की नई रोमांस नॉवल है जो अभी रिलीज नहीं हुई है, होने वाली है। कहानी जो है वो ग्रेस की है जो अपनी मदर के कैफे में काम करते करते अब अपना कुछ बनाना चाहती हैं। उसे एक हिस्टोरिक आइलैंड इन मिलता है और वो उसे अपना बिजनेस बनाने का सपना देखती है। लेकिन उसी प्रॉपर्टी पर एक बिलियनेयर जो है वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों पहले से ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिना ये जाने कि रियल लाइफ में वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। क्या स्टोरी बनाई है भाई, मतलब थोड़ा सा रोमांस है, थोड़ी सी मिस्ट्री है, थोड़ा सा स्मॉल टाउन का चार्म है और सारी कॉम्प्लिकेशन इसी किताब में है। सो किताब की बात करेंगे और कहानी में हमें कोई बड़ी फिलोसफिकल बात नहीं मतलब सीखने को मिलती, कुछ कहानियां बस हमें ना 2 घंटे के लिए दुनिया से दूर लेकर जाती है। सो वैसी ये किताब है, रोमांस, मिस्ट्री, कॉमेडी, सब कुछ आपको मिलेगा और आखिरी पेज तक आपको पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

अगर आपने किताबों को पढ़ना और यू नो थोड़ा बहुत फील करना स्टार्ट किया है तो यू नो अबाउट दिस बुक जिसका नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार। उसी के राइटर हैं जॉन ग्रीन। अब उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब जॉन ग्रीन कुछ बिल्कुल नया लेकर आ रहे हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। उनकी एक नई किताब है हॉलीवुड एंडिंग, जो कि 22 सितंबर को इसी महीने रिलीज होगी और ये उनकी पहली अडल्ट नॉवल है। करीब 9 साल के बाद उनका नया फिक्शन आया है। कहानी दो यंग एक्टर्स की है जिन्हें एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। शुरुआत में सब एकदम सपने जैसा, फेम, सक्सेस, लव, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनकी जिंदगी ना पब्लिक होने लग जाती है। और यही किताब एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है, जब पूरी दुनिया आपको देख रही हो तो क्या आपकी जिंदगी सच में आपकी रह जाती है? भाई ये सवाल तो सोशल मीडिया पर भी हर कोई पूछता है। हम भी अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दुनिया को दिखाते हैं, कितना हिस्सा सिर्फ अपना रखते हैं। तो अगर आपको एक दिन के लिए सेलिब्रिटी बनने का मौका मिले तो आप क्या चाहोगे, फेम या सीक्रेटली बोलोगे कि नहीं भाई मेरी प्राइवेसी मुझे वापस दो? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।

इस वीकेंड मैंने सबसे पहले बिंज वॉच किया चुंबक। भाई क्या तो मतलब कॉमेडी है, बहुत मजा आएगा आपको और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। और इसी के साथ भाई दो तीन दिन पहले 9th को बेसिकली रात को ना एप्पल का इवेंट हुआ था और एप्पल ने अपना नया फर्स्ट फोल्डेबल फोन जो है वो निकाल दिया है। अब इसके प्राइजेस देखने के बाद एवरीबॉडी सरप्राइज कि भाई इतना महंगा फोन। बट मैं अगर अपने फोन की बात करूं तो अगर मतलब इतना बढ़िया चल रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट सोशल मीडिया जो है वो हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें नई नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। सो इसका जो प्री ऑर्डर है वो 16th of October से स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई मतलब प्री ऑर्डर भी देना पड़ेगा, इसका मेन डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले, वजन, इसका रिफ्रेश रेट, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, जबकि इन सब चीजों से नॉर्मल लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है। सो रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, बहुत ही बढ़िया फोन बना है। फोल्डेबल होने पर भी इसकी स्क्रीन जो है वो 5.4 इंचेस हो जाती है और जब ये खुलता है तो 7.6 इंचेस की इसकी स्क्रीन होती है। सो लिक्विड ग्लास डिजाइन है फोन में, अलग अलग दो बैटरीज है जिसकी बात हर कोई कर रहा है और बहुत ही मजबूत और टिकाऊ डिजाइन बनाया है। एक स्क्रीन पर दो ऐप एक साथ मतलब आप चला सकते हो। भाई अगर आपको इतना काम है तो ही आप ये फोन लीजिएगा, वरना मेरा तो पिछले साल वाला फोन भी अभी तक ढंग से यूज नहीं हो पाया है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक। 106.3 FM

0: सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट प्रोटीन. मतलब जब भी आप कंपैरिजन करोगे इंडियन फूड और बाहर के खाने में, तो लोग आपको बताएंगे कि इंडियन खाने में तो प्रोटीन है ही नहीं. हमारी जो प्लेट है उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, और इसी के साथ आलू की सब्जी, राजमा चावल रोटी, मतलब ये सब छोले भटूरे जैसी चीज़ें आपको दिख जाएंगी. सो इसमें से कोई एक चीज़ अगर खाना आप खा लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम है कि भाई प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्ब्स बहुत सारे हो जाते हैं, और फिर आता है आलस. रोटी के साथ चावल, पास्ता के साथ गार्लिक ब्रेड, नूडल्स के साथ फ्राइज, मतलब डबल कार्बिंग इसे कहते हैं. इसका मतलब है एक ही मील में कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा भरपूर खाना और प्रोटीन जीरो. सो अगर आप भी ऐसा ही खाना खाते हो तो आप मुझे बताओ, क्या आपको भी ऐसा गिल्ट आता है कि यार आज तो प्रोटीन मिला ही नहीं. बाय द वे, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि प्रोटीन लूँ, चाहे वो कर्ड हो, ग्रीक योगर्ट हो, कोई प्रोटीन शेक्स हो. बट यू टेल मी कि आप अपना प्रोटीन जो है वो कैसे पूरा करते हो, एंड इफ यू आर ऑल्सो यू नो वन ऑफ देम कि आपको भी सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन दिखाई देता है, और फिर आप सोचते हो कि यार मेरे खाने में भी तो प्रोटीन पूरा हो नहीं पा रहा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है लाइफ मस्त है, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Cool song.

कोई फैशन की बात करती हूँ और इतने सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि यार एक तो ना हर कोई इतने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करना चाहता सिर्फ शॉपिंग में, कि ये ट्रेंड में आया तो खरीद लिया, वो ट्रेंड में आया तो खरीद लिया. सो जो आपके पास है उसको मिसमैच करके पहनने का भी अपना एक अलग मजा है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो फैशन की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग बदलाव जो है ये दिखाई दे रहा है. इस सीजन क्या ट्रेंड में है, बल्कि सवाल ये है कि मेरे लिए क्या काम करता है. फॉल 2026 फैशन फोकस्ड में इंडिविजुअलिटी, स्ट्रॉन्ग टेलरिंग, अर्दी शेड्स और पीस जो है वो फोकस हो रहा है जो पर्सनालिटी को सूट करे. मतलब फैशन शायद फिर से उस जगह पर जा रहा है जहां पूरा ट्रेंड हेड टू टो कॉपी करने की जरूरत नहीं है. एक सिंपल आउटफिट भी आपके उस सिग्नेचर दिखा सकता है. मतलब किसी की पहचान साड़ी है, किसी को ओवरसाइज्ड जो शर्ट्स होती हैं वो पहनना पसंद है, किसी को ब्लैक कलर पहनना पसंद है, और असली स्टाइल शायद यही है. लोग अपने कपड़े देखकर ट्रेंड नहीं, आपको पहचान जाए, मतलब बस इतना होना चाहिए. अब सैटरडे फैशन पूल करते हैं कि आपका स्टाइल क्या है, क्लासिक, मिनिमल, देसी या फिर ड्रामेटिक. और अगर कोई कैटेगरी फिट नहीं बैठती है तो आप खुद भी कैटेगरी बना सकते हो. बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार हो लो, बट कुछ नॉर्मल डेज हैं तो भाई काम पे फोकस करना होता है, बाकी सारी चीजों पे इतना फोकस मेरा हो नहीं पाता. यू टेल मी. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने फैशन में, एक कोलैबोरेशन ऐसा जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा। कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल लॉन्च की, और कोई मतलब कोई कहीं से कहीं तक यू नो जिससे कहते हैं ना कि कोई मतलब नाम आ जाए कि कहाँ से लिया, क्या डिजाइन बनाया, कुछ नहीं दिया। पर प्यूमा ने और जयपुर रग्स ने मिलकर आइकॉनिक सूट स्नीकर्स निकाले हैं क्राफ्टमैनशिप से इंस्पायर होके, मतलब एटलीस्ट दोनों का नाम है। इस कोलैबोरेशन में राजस्थान के ट्रेडिशनल क्राफ्ट और टेक्सटाइल एस्थेटिक को मॉडर्न स्नीकर डिजाइन के साथ जोड़ा गया है। मतलब अगर आपको स्नीकर पहन पहन के बोरिंग हो गया है तो यू हैव नाउ दिस स्नीकर। मतलब जिस तरह हम इंडियन क्राफ्टमैनशिप को आमतौर पर कारपेट, साड़ी, होम डेकोर से जोड़ते हैं, वही विजुअल लैंग्वेज स्नीकर पर दिखाई देगी। और ये आज की फैशन की सबसे अच्छी यू नो चीज मुझे लगी, हेरिटेज को म्यूजियम में बंद करके नहीं बल्कि एवरीडे लाइफ में पहनना। आपको अपनी कल्चर की कोई ट्रेडिशनल चीज अगर मॉडर्न फैशन में देखने को मिल जाए तो आप क्या चुनोगे? कोई फुलकारी जैकेट, कोई बनारसी स्नीकर, या फिर कच एम्ब्रॉयडरी वाले बैग्स? ओ हो, क्या बढ़िया लगते हैं। और केरला की वो कसाब इंस्पायर्ड स्ट्रीट वेयर देखना चाहोगे, क्योंकि फैशन का ना अलग बड़ा ही मतलब ट्रेंड है जो अब लोग कॉपी कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स कॉपी कर रहे हैं। सो यू टेल मी, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज है जो अब इन सब चीजों को लेकर बननी चाहिए? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

सो इंडिया की एक जगह पर एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज हुई। इमेजिन कीजिए, आप एक ग्रैंड बॉलरूम में एंटर करते हो, क्लासिक म्यूजिक बज रहा है, लोग एलैबोरेट गाउन्स और सूट्स में हैं, और कोई आपको देखकर पूछता है कि मे आई हैव दिस डांस, वेलकम टू ब्रिजटन यूनिवर्स। भाई इंडिया की एक सिटी में ब्रिजटन इंस्पायर्ड बॉल ने काफी अटेंशन लिया और पूरे सोशल मीडिया पर यह चल रहा है। सो बेसिकली ये जो रिजेंसी एरा एस्थेटिक्स के साथ पूरा एक्सपीरियंस जो है वो रिक्रिएट किया था, और कुछ लोगों को ये बहुत क्रिएटिव लगा और कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई ये सब क्या चल रहा है। लेकिन मुझे ये ट्रेंड इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है क्योंकि लोग ना अब सिर्फ सीरीज देखना नहीं चाहते, वो उसकी दुनिया के अंदर जाना चाहते हैं। इसीलिए इतने सारे थीम कैफेज जो है वो आप कतर में देखोगे। सो फैन इवेंट्स होते रहते हैं, कॉस्ट्यूम पार्टीज होती हैं, इंप्रेसिव एक्सपीरियंसेस ऐसे जो है वो लोग कर रहे होते हैं जहां पर लोगों को इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाए। एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई अगर मुझे ये चांस मिलता तो मैं कौन से कलर का गाउन पहनती। सो अगर आपको सिर्फ एक रात के लिए किसी फिल्म या सीरीज के लिए किसी दुनिया में जाने का मौका मिले, चाहे वो ब्रिजटन हो, हैरी पॉटर हो, या बॉलीवुड का 90s का टाइम हो, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप का कोई टाइम हो, तो आप मुझे बताइए आप क्या फील करना पसंद करोगे, मतलब कौन सी दुनिया में जाना पसंद करोगे। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है।

0: आई नो थर्सडे के बाद आपका मूड ना एकदम डिफरेंट होता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे इज नॉट वर्किंग फॉर एवरीबॉडी. सैटरडे या तो किसी का हाफ डे होता है या किसी को घर पे बैठ के थोड़ा बहुत काम करना होता है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका सैटरडे भी फुली ऑफ होता है. सो मैं जितने सारे लोगों को जानती हूँ उनमें कई सारे लोग हैं जो सैटरडे वर्किंग नहीं होते, और कई सारे ऐसे कपल्स हैं जिसमें से एक वर्किंग है सैटरडे को और दूसरे के पास सैटरडे एकदम फ्री है. और वो कपल ना बड़ा ही परेशान रहता है, उसे लगता है कि यार ये मुझे हाफ डे जाना पड़ रहा है, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे. लेकिन जो ऑफिस में नहीं जा रहा होता उसके पास काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. ग्रॉसरी मंगवा के रख लेना, घर को थोड़ा सा सेट कर लेना, क्योंकि आजकल हर कोई मिलजुल के काम करता है ना. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो आज ऑफिस में भी ना बड़ा ऐसा ही माहौल है. हम कुछ देर के लिए ऑफिस आते हैं, आपसे बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं, पर वीकेंड वाला जो वाइब है वो सैटरडे को अलग ही समझ आ रहा होता है. सो यू टेल मी कि आपको सैटरडे का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है. 3311106 माय नंबर. बाय द वे ये मत कहिएगा कि हाफ डे ऑफिस जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, अभी आपके पास आधा दिन बाकी है. यू टेल मी योर फेवरेट पार्ट ऑफ सैटरडे. 3311106 माय नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Cool song.

भाई ये 80s वाला वायरल ना अभी तक चल रहा है, मतलब जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ तो हर दूसरा आदमी मुझे वो 80s के ट्रेंड में दिख जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है। अभी इस टाइम पर आप 80s का लुक तो देख ही रहे हो और इसी के साथ इंटरनेट पर 80s लुक वाला ट्रेंड के अलावा एक गाना बहुत वायरल हो रहा है किशोर कुमार का, और वो वायरल ट्रेंड की तरह ना पॉपुलर हो रहा है। सो किशोर कुमार ने एक रोमांटिक गाना गाया था जो आपको हर जगह सुनाई दे जाएगा। सो एज अ सिंगर किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा जो गाना है वो 80s के टाइम का बेस्ट गाना है। सो बिग बी की जोड़ी वाले सबसे ब्यूटीफुल गाने में वो 1981 में रिलीज हुआ अमिताभ की कल्ट मूवी सिलसिला का गाना है देखा एक ख्वाब। भाई वो गाना इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, मतलब मेरी तो सोशल मीडिया पर सिर्फ वही गाना सुनाई दे रहा है। सो यू टेल मी कि फोटोज के अलावा कौन सा गाना है जो लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। Boy.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर

0: वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो
0: 106.3
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सो दिस इज द टाइम एंड आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. अब सैटरडे को खत्म करते हैं एक लिटिल इमेजिनेशन गेम के साथ. मान लीजिए आपको एक मैजिकल टिकट मिलता है, पैसा अनलिमिटेड, वीजा की जरूरत नहीं है, फ्लाइट अभी तैयार है, लेकिन एक कंडीशन है, आपके पास दुनिया में किसी भी जगह बिताने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं क्योंकि कल से तो ऑफिस है. अब सोचिए पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मालदीव्स या फिर कहीं अच्छी जगह स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ जाना चाहते हो, या फिर इंडिया में कोई ऐसी जगह जब आपको लगता है कि यार घर जाके मम्मी पापा से मिलके आता हूँ. सो आप मुझे बताइए कि आप क्या करोगे इस 24 घंटे में. बस होटल रूम की बालकनी में बैठकर दुनिया देखोगे या फिर फटाफट से एक ट्रिप मार के आओगे इस 24 घंटे में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान. आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा विद दिस इमेजिनेशन कि कल से हम वापस से अपने काम पे वापस जाएंगे विद लॉट ऑफ न्यू एनर्जी, लॉट ऑफ न्यू क्रिएटिविटी. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए. और सुपर हिट गाने मैंने एकदम लाइन अप कर दिए. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए एक साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताते हैं। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: is brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो जब मैं कतर में आया था स्टार्टिंग में, मैंने देखा मेरे रूममेट जो थे वो प्रोजेक्टर यूज करते थे, ठीक है। तो रात को ऐसे मूवी देखने के लिए या फिर यूट्यूब में ऐसे वीडियो स्क्रॉल करने के लिए वो प्रोजेक्टर डाल के ऐसे बड़े स्क्रीन में एकदम एंजॉय करके देखते थे। तो फिर जब वो गए यहाँ से तो उन्होंने बोला तुझे प्रोजेक्टर चाहिए, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो शौक नहीं है, आप ले लो, मैं स्पीकर रख लूंगा करके मैंने उनसे स्पीकर खरीद लिया था। और रिसेंटली मैंने जो है एक परचेज देखा एक बंदे का, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। तो उसने अपने प्रोजेक्टर को इस तरीके से सेटअप किया कि सीधा दीवार में जो है उसका प्रोजेक्शन दिखेगा और किताबें लोड कर रखी है उसमें, और जैसे हम किताबों के पन्ने पलटते हैं वैसे ही वो ट्रांजिशन एनिमेशन डाला हुआ है। और इतना कूल लग रहा था यार, वो इतना कूल लग रहा था, यानी कि रात को सोने से पहले अगर आप रीड करना चाहते हो और लाइट ऑन नहीं करना है या फिर उठ के लाइट ऑफ करने का जो झंझट है वो सब अवॉइड करना है, तो ये काफ़ी बढ़िया एक मुझे तरीका लगा। वैसे आपको यही बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम सब फुटबॉल देख चुके हैं, वर्ल्ड कप देखा हमने, और बचपन में भी कहीं ना कहीं हमने फुटबॉल खेला भी होगा। तो जो क्लासिक फुटबॉल का शेप है उसमें हमने देखा होगा हेक्सागन और पेंटागन बने होते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेक्सागन जो है नेचुरली ऑकरिंग एक शेप है जो हम बीहाइव्स में सब देखते हैं, और पेंटागन एक ज्योमेट्रिकल शेप है, हेक्सागन भी ऑब्वियसली एक ज्योमेट्रिकल शेप ही है। मगर सिर्फ हेक्सागन से हम फुटबॉल नहीं बना सकते, पेंटागन भी चाहिए, क्योंकि पेंटागन और हेक्सागन का पैटर्न अगर आप देखो तो देख सकते हो कि एक पेंटागन के पास हमेशा फुटबॉल में दो हेक्सागन होते हैं, तो इनका जो कंबाइंड एंगल है वो एक 348 डिग्री बन जाता है। तो जो बाकी बचे 12 डिग्री है ना, वो बॉल को कर्वेचर देते हैं। तो इन दोनों के इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन से ही बॉल जो है एक स्फीयर शेप में आता है। इसलिए फुटबॉल को क्लासिक तरीके से जब बनाते थे तो पेंटागन और हेक्सागन यूज करके बनाते थे। बट अभी बहुत चेंज हो चुका है, बहुत तरीके से चेंजेस आ चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। आप यही बैठे रहिए, गाने सुनिए, एंजॉय करिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात कर रहे थे कैसे क्लासिक फुटबॉल जो है पेंटागन और हेक्सागन के पैनल्स को मिला के बनाया गया था। बट आजकल की फुटबॉल को अगर हम देखें, स्पेशली जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अगर हम देखें तो उसमें पेंटागन हेक्सागन कुछ यूज़ नहीं हुआ है, उसमें जो है 3D मॉडल्ड शेप्स का यूज़ किया गया है, और ट्रायोंडा जो बॉल का नाम है वो बेसिकली चार पैनल से बना है, और उन चार पैनल को कंबाइन करके वो बॉल का शेप आया है। वो इसलिए भी आया है क्योंकि जैसे जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, साइंटिस्ट ने या फिर बॉल मेकर्स ने ये सोचा या फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमें अब प्रॉपर ज्योमेट्री की ज़रूरत नहीं है, हम साइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को यूज़ करके भी हम जो है बॉल के पैनल को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप देखो तो 2010 में जो फुटबॉल आया था जाबुलानी, उसमें 8 पैनल थे, और 2026 का जो वर्ल्ड कप था ट्रायोंडा, उसमें 4 पैनल हैं। तो धीरे धीरे धीरे बॉल के साथ भी जो है इनोवेशन हो रहा है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
1: ससिकाल जी मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम जियो बिंदास

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, कुछ मंडेन टास्क होते हैं जैसे कि कपड़े आयन करना, पौधों को पानी डालना, ये काफी मंडेन है, बोरिंग है, मगर काफी एक रिलैक्सिंग फील हमें देते हैं, एक थेरेप्यूटिक जो है इफेक्ट इनका मिलता है। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो सेंसरी ओवरलोड आजकल हम फील करते हैं उससे ब्रेन को कट ऑफ करने का मौका मिलता है। और जो रिदमिक पैटर्न है, अगर हम कपड़े आयन करते हैं तो एक रिदमिक पैटर्न में हमारे हाथ चलते हैं, पानी डालते वक्त पौधों को तब भी एक रिदमिक पैटर्न में जो है हाथ चलते हैं, तो इससे जो है काफ़ी कामिंग सेंसेशन जो है हमारा ब्रेन फील करता है। और इसलिए ऐसे छोटे छोटे बोरिंग बोरिंग काम जो है आजकल के ज़माने में और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक डिजिटल स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है ब्रेन का। तो उसमें से अपने आप को हटाने के लिए, अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देने के लिए ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, हम ऑटोमेटिकली काम कर लेते हैं। और फॉर दिस मैटर कुछ लोग ड्राइव पे जाना भी पसंद करते हैं, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas
1: Olive laga aur ho ja recharge Olive recharge
0: Olive recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
1: Olive recharge
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में

0: Olive 106.3 FM Geo Bindas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। देखिए, फन करने के बहुत तरीके होते हैं लाइफ में, और ऑफिस में अगर फन करना चाहते हैं आप तो एक तरीका है, वो है रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में इन्वाइट करके। मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीनेस लॉन्च की, जहां पे आपके पास मौका है रेडियो ऑलिव की टीम के साथ एक दिन आपके ऑफिस में चिल करने का, एंजॉय करने का, फन करने का, रिचार्ज होने का और री एनर्जाइज होने का। इसका हिस्सा बनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। हमें मैसेज कीजिए HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम, हमारी टीम में से एक मेंबर जो है आपके साथ कांटेक्ट करेगा, बात करेगा, डिटेल्स जो है शेयर करेगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो कोई गल नहीं जी, भाई आया है बता के ही जाएगा। तो लॉ नंबर 11 ऑफ 2004 जिसमें 331 आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी आपके बारे में न्यूज स्प्रेड करता है, फोटोग्राफ्स या फिर कमेंट आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में या फिर अपने फैमिली के बारे में स्प्रेड करता है, इवन दो वो सच भी हो, उस इंसान को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है 5000 कतरी रियाल तक का। इनमें से कोई एक पेनल्टी जो है लग सकती है। और देखिए इसका मतलब यही है कि किसी और की लाइफ में अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं करना है और किसी के बारे में रूमर्स या फिर कुछ स्प्रेड नहीं करना है। काफी इंटरेस्टिंग लॉ लगा मुझे, ऐसा होना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, हमारे घर के आसपास, हमारे गाँव के आसपास अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद अथॉरिटीज सही में बहुत पैसे कमा लेती। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall.

0: 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली वो स्टेटमेंट। उसमें ये लिखा था कि कुछ लोग आपको जज करते हैं, कुछ लोग जो हैं आपसे इंस्पायर होते हैं, मगर ये दोनों आपके बिल नहीं भरते हैं। तो अपने काम से काम रखो और अपनी जिंदगी में जो अच्छा करना चाहते हो वो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि कभी ना कभी हम अपने लाइफ में एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे हम दूसरों के परसेप्शन के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। Stay true to yourself. अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी, उसे अपने तौर तरीकों पे जीना सीखो। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: लगा और हो जा रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: ऑलिव रिचार्ज
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। और आप फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी तो फिर हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें सुनते हुए आप स्टोरी बना के इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास मौका है बहुत ही बढ़िया बढ़िया गिफ्ट और प्राइजेस जीतने का, क्योंकि काफ़ी बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आते हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: लगा और हो जा रिचार्ज
0: रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, जबरदस्त इवनिंग शुरू होने वाला है, मेरा वक्त खत्म होने वाला है। मगर कोई गल नहीं जी, जाने से पहले आपको यही याद दिलाएंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

क्या मांगा था मैंने आपसे, थोड़ी एक्स्ट्रा नींद, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं दे पाए क्योंकि सैटरडे को ऑफिस आना पड़ा एंड काम भी करना पड़ा। अगर आपको सैटरडे की छुट्टी मिली है तो कंग्रेचुलेशंस, लकी हैं आप। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पे आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा इन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। एंड आज के शो में बहुत सारी फन बातें करने वाले हम, क्योंकि कॉन्टेंट मेरे पास कुछ है नहीं। कल मैं पूरा दिन सो रही थी, मैंने सोशल मीडिया भी यूज नहीं किया, आज भी सुबह से मैं आलस में हूँ, पता नहीं क्यों बहुत लेजी फील कर रही हूँ, एंड मैंने सोशल मीडिया ज्यादा स्क्रोल नहीं किया। एंड आपको तो पता है कि मैं सारी गपशप सारी गॉसिप अपनी इंस्टाग्राम से आपके लिए लेकर आती हूँ, सो अगर आपके पास कोई गॉसिप है कोई गपशप है तो वो मुझे भेज दो 3311063 पर। बाकी जैसे जैसे आप गाने सुनेंगे मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रोल करूंगी एंड आपको बताती रहूंगी कि क्या कुछ नया नवेला चल रहा है। फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने इंजॉय कीजिए आप रेडियो ऑलिव पर और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी।
4: रेडियो ओलिव, आई एम नंबर वन।
3: यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
4: रेडियो ओलिव, आई एम नंबर वन।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कभी कभी ना वीकेंड मुझे बिल्कुल मेरे कजिन्स की तरह लगता है. वो कजिन्स जिनको आप ज्यादा पसंद नहीं करते हो, लेकिन वो आते हैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि देखो तुम कैपेबल नहीं हो और हम कितना अच्छा कर रहे हैं. मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखो यार, मैं हमेशा से अपनी फैमिली के साथ रही हूँ एंड ये पहली बार है, मतलब कतर आए हुए अभी मुझे 7 महीने हुए हैं एंड मैं पहली बार अपनी फैमिली से थोड़ा दूर आई हूँ. एंड यहाँ पर ना मुझे वक्त वक्त पर अलग अलग टाइप के रिश्तेदारों की याद आती है, इसीलिए मैं आपको उसको फन वे में बताती हूँ. मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहती हूँ, ओके, बट मैं जनरली बस कंपेयर कर रही थी. तो हम सबके लाइफ में वो कजिन्स होते हैं जो बहुत ओवर अचीव कर रहे होते हैं, या अगर वो अचीव नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी उनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को ऐसे ही पोर्ट्रे करके बताते हैं कि यार हमारा बच्चा तो देखो बहुत ही ज्यादा ही अमेजिंग है और आपका बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा है. बस वीकेंड में मुझे कुछ इसी तरह लगता है, जैसे वो जो कजिन्स हैं वो हमारे घर आते हैं और हमें ये बताते हैं कि अरे तुम स्कोर नहीं कर पाए, अरे तुम ये नहीं करते, तुम्हें ये हॉबी नहीं है, तुम्हें ये आर्ट नहीं आता. बिल्कुल वैसे ही वीकेंड भी बताता है, अरे तुम लॉन्ड्री नहीं कर पाए, अरे तुमसे फिर खाना नहीं बन पाया, अरे फिर बाल वॉश करने में दिन चला गया. सो वीकेंड एंड ये वाले कजिन जो है, इसीलिए मैंने कंपेयर किए क्योंकि मुझे सेम

0: लगते हैं क्योंकि दोनों ही स्ट्रेस देके चले जाते हैं और ये बताते हैं कि यार वक्त कैसे बीतता जा रहा है, लेकिन हम कुछ काम जो हमने डिसाइड किए थे कि हमें करने वो हम कर नहीं पा रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, हम अपने काम अपनी स्पीड से अपने तरीके से करते रहें एंड नए प्लान्स बनाते रहें, उन्हें फन तरीके से करते रहें। बस यही तो लाइफ है। देखो उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। वो लाइफ में सैड रहना चाहते हैं, हम लाइफ में जो है खुश रहना चाहते हैं। तो खुशी को प्रायोरिटी दीजिए एंड आपकी कशिश को भी प्रायोरिटी दीजिए। इसलिए 3311063 पर मैसेज कर दीजिए और बाकी अमेजिंग वाले गाने तो मैंने आपके लिए लगा ही दिए प्ले लिस्ट में, सो इन्जॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: Shopping lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping. Nesto,
3: all that you need. Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू hypermarkets supermarkets and department stores where the world comes to shop just

0: आज ना मतलब ऑफिस आने के बाद मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी एंड मुझे लग रहा था कि यार वीकेंड क्यों खत्म हो जाता है एंड क्यों ऑफिस जाना पड़ता है. एंड मैंने ना ऐसी एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे जहां पर लोगों ने मुझे बहुत फनी फनी रिस्पॉन्स दिए एंड एक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखो यार मैंने ना ये पोस्ट किया कि यार एक बात बताओ हर चीज में हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं. आज सैटरडे के दिन काम करना पड़ रहा है इसमें क्या पॉजिटिविटी आप देखना चाहेंगे. सो एक मेरे फ्रेंड ने जो है वो लिखा कि मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट ये है कि भले ही मुझे सैटरडे को ऑफिस आना पड़ रहा है लेकिन एटलीस्ट मेरी जो चेयर है वो गोल गोल घूमती है. सो देखिए कितनी छोटी सी चीज में इन्होंने जो है कितनी ज्यादा पॉजिटिव चीज निकाल दी. आप मुझे बताइए आपकी लाइफ में वो एक पॉजिटिव चीज क्या है. मतलब वो ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन दिल को यू नो बहलाने के लिए एक ख्याल ही काफी है. वो वाली चीज कौन सी है जैसे एटलीस्ट मुझे सैटरडे को आना पड़ रहा है बट मेरा आउटफिट जो है वो मुझे स्टाइल करने का मौका मिल जाता है. सो दैट्स माई मोटिवेशन. आप मुझे बताइए 3311063 पर कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में वो छोटा सा मोटिवेशन भले ही दिल को बहलाने के लिए ही सही लेकिन वो कौन सा है. मैं हूँ आपकी कशिश मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड रहिए एंड 3311063 पर मैसेज कर दीजिए. जियो बिंदास.
1: Come on, baby. Oh, sugar. Now hear me.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।

0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
1: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास. जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
2: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

तो थोड़ी देर पहले ना मैंने आप सबसे पूछा था कि यार लाइफ की वो छोटी छोटी चीजें क्या है जिन्हें आप दिल रखने के लिए ही सही लेकिन पॉजिटिविटी का तड़का अपनी लाइफ में मानकर जो है चल रहे हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाए रखा है। अब देखिए काफी सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आए लेकिन एक मैसेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो ये था कि एटलीस्ट कशिश मुझे जो है ऑफिस जाकर अपनी मर्जी से जो है बैठने की फुर्सत मिल जाती है, वरना घर पे तो मम्मी पूरे टाइम यही बोलती रहती है अच्छे से बैठो, ये कर दो वो कर दो। एटलीस्ट ऑफिस जाकर मैं अपने जूनियर्स को जो है ये बोल पाता हूँ कि ये काम मुझे अभी चाहिए, ये काम मुझे अभी चाहिए, वरना घर पे मेरी कोई सुनता नहीं है। वैसे ये भी अच्छा तरीका है ना ऑफिस जाने का, मोटिवेशन पाने का। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, आप सब भी अपने ऐसे ही फनी फनी जो है मोटिवेशंस के ट्रिक्स जो है वो मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: Biryani Belly. Bye bye. Flabs instead of abs. Not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 p.m. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
1: Shopping lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayyar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda, aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping.
2: Nesto, all that you need.
3: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन.
4: हाय दिस इज विपाशा बासु.
5: हाय आई एम राजकुमार राव.
6: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
7: हाय दिस इज दिशा पार्डी.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 एफएम.
8: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
11: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: प्यार करने वालों को कोई दूर नहीं कर सकता, ना धूप ना बारिश। ये मौसम प्यार करने वालों को क्या दूर करेगा? आई नो, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक होने की कोशिश मैंने की लेकिन हो नहीं पाई, बिकॉज मैं हुई नहीं। मैं बहुत ही बेसिक इंसान हूँ, बहुत ही बोरिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मैं ओवर ड्रामेटिक नहीं हूँ। एटलीस्ट आप लोगों के सामने तो नहीं हूँ, मेरे घर वाले ही जानते हैं मैं कितना ड्रामा करती हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा जो है वो मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। ये जो अलार्म की आवाज अगर आपने सुनी तो ये मेरे जो है पानी पीने का अलार्म था, तो आप लोग भी जो है इस अलार्म को जो है मान सकते हैं बिल्कुल एंड पानी पी सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बस आपसे बातचीत करने के बाद जो है पानी पी के आऊंगी। फिलहाल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली थी, तो अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ अपने हस्बैंड के साथ जो है वॉक करते हुए जब धूप बहुत होती है या थोड़ी बहुत बारिश, वैसे बारिश तो कतर में होती नहीं है पर अगर कभी होती है एंड आप कभी अम्ब्रेला में चल रहे हैं एंड आप एक अम्ब्रेला में दोनों नहीं चल पाते हैं, तो आपके लिए जो है एक अम्ब्रेला लॉन्च हो चुका है जहाँ पर जो है दोनों के सर पे अलग अलग अम्ब्रेला होगा लेकिन जो हैंडल है वो सेम होगा। तो अब कपल्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है साथ में वॉक करने में एंड आपके पार्टनर के पास कोई बहाना नहीं होगा आपसे दूर चलने में। वरना लड़के जो है ये बहाना बना देते हैं यार कि यार ये अम्ब्रेला में ना भीग रहे हैं, हम एक काम करते हैं दो अलग अलग अम्ब्रेला ले लेते हैं। गॉट यू, जरूर मुझे ऐसा लगता है किसी लड़की ने डिज़ाइन किया है ये अम्ब्रेला, जितना खूबसूरत एस्थेटिक ये है और जितना थॉटफुल ये है लड़कियां ही कर सकती हैं ये। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। मैं जरा पानी पी के आती हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैजराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

या देखो, अगर आप शादीशुदा हैं और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ से जो है आपके ओपिनियंस नहीं मैच करते, और आप ये जो है किसी नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसा होता ही है, ऐसा सोच रहे हो, तो नहीं, ये जो सेम चीज़ है ये सेलिब्रिटीज के साथ भी होती है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान को तो हम जानते ही हैं, एंड इन दोनों ने साथ में भी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करने वाली मूवीज़ भी साथ में की है। लेकिन एक इंटरव्यू में जब करीना से पूछा गया स्क्रिप्ट की आइडियोलॉजीज़ के बारे में, तो करीना का ये कहना था कि सैफ की आइडियोलॉजीज एंड मेरी आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, स्टोरीज की बात करते हैं, हम दोनों बहुत अलग अलग सोचते हैं। कई स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड सैफ को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, एंड काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स जो जिन पे अभी सैफ काम कर रहे हैं वो करीना को बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, लेकिन सैफ ने उन्हें जो है हार्ड कोर कहा है एंड कहा है कि यार ये तो कुछ अमेजिंग है। सो सैफ अली खान जहाँ पर उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्जन्स अपने दिखाए हैं, मैं तो फॉर श्योर सैफ के साइड पर रहने वाली हूँ। लेकिन कपल्स के बीच में ओपिनियंस का अलग होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आप कपल होने के पहले दो अलग इंसान हो, सो दैट्स ओके आई फील। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पर, या आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: यार पहले ना मुझे लगा कि ये मीम है या सिर्फ ऐसे ही मजाक चल रहा है, लेकिन अब मुझे सच में ये रियलाइज हो रहा है दैट जैसे ही ये नया आईफोन जो है वो लॉन्च हुआ है, तब मेरा जो एग्जिस्टिंग आईफोन है ये ना दिक्कत देना शुरू कर चुका है। वैसे तो बहुत बढ़िया चल रहा था अभी इतने सालों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई नया आईफोन लॉन्च होता है वैसे ही पता नहीं क्यों ये स्लो हो जाता है, ग्लिच करने लग जाता है एंड दिक्कत देने लग जाता है। एंड मेरे पापा को लगता है कि मैं बहाने बना रही हूँ क्योंकि नया आईफोन लॉन्च हुआ है तो फिर नया आईफोन चाहिए। नहीं पापा, आपकी बेटी इतनी जो है वो नहीं है स्टूपिड। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार क्या कहते हैं उस वर्ड को, मुझे वो वर्ड नहीं आ पा रहा है। मतलब मैं हर चीज़ किसी रीज़न से नहीं करती कि आप मुझे जो है नया फ़ोन दिलाएं इसलिए मैंने अभी अपना करंट फ़ोन ख़राब कर दिया। और बहुत सारे डैड्स को एंड बहुत सारे हस्बैंड्स को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे छोटे से मतलब सिबलिंग्स जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं, तो बड़े सिबलिंग्स को ऐसा लग रहा है। मतलब मेरा छोटा भाई भी मुझे कह रहा था कि पता है मेरा आईफोन अच्छा चल नहीं रहा है, एंड मैंने उसे कहा मैं नहीं दिलाऊंगी। जो भी डोमिनेट होता है ना, जो मतलब ज़्यादातर अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करता है, उसे ये सब बहाना ही लगता है अनलेस एंड अनटिल उसके साथ ऐसा हो रहा होता है। सो, क्या आप वो इंसान है जो ये बहाने बना रहा है, मतलब जिससे ये सब फील हो रहा है या जिसको ये सब बहाने लग रहे हैं? आप कौन सी साइड पे एग्जिस्ट करते हैं बताइए मुझे 3311063 पर, क्योंकि मैं तो दोनों जगह पर हूँ। मैं अपने पापा को जो है बता रही हूँ तो उन्हें बहाना लग रहा है, एंड मेरा भाई मुझे बता रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये बहाना बना रहा है। क्या आप समझ पाए इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को? मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रही और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
1: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
2: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: गालियां गंदे।
1: वैसे तो आज तक जेंजीज को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार ये मिलेनियल्स को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, एंड मिलेनियल्स ने जितने भी रूल्स बनाए हैं या जितनी भी चीजें करी हैं ये सिर्फ उसमें बुराई ही निकालते रहते, इसीलिए हमें जेंजीज पसंद नहीं है, ऐसा लोग कहते थे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए, स्वदेश एक ऐसी मूवी है जो हर जनरेशन को अच्छी लगी है। उसके बहुत सारे रीजन है, सबसे पहला तो शाहरुख खान है, एंड दूसरा आशुतोष गवारिकर ने बहुत कम मूवीज़ बनाई हैं, लेकिन जितनी मूवीज़ बनाई हैं वो हमेशा एक डेप्थ के साथ, एक फीलिंग के साथ बनाते हैं, एंड जिससे अपने आप फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी लगने लग जाती है। एंड हम जैसे लोग जो अपनी कंट्री से, किसी भी कंट्री में के आप हैं एंड थोड़े से आप उससे दूर रहते हैं, तो आप जब वापस जाते हैं तो आपको वो वाली फीलिंग ज़रूर आती है जो शाहरुख खान को स्वदेश में आई थी। सो बेसिकली इस मूवी के पीछे जो है 22 साल बाद अब जेंजीज जो है वो काफ़ी क्रिएटिवली जो है इसके इससे इम्प्रेस हो रहे हैं। बेसिकली 22 इयर्स बाद स्वदेश मूवी के जो है पोस्टर्स पे बात चल रही है कि कितने क्रिएटिवली इसके पोस्टर्स जो है वो डिज़ाइन किए गए थे, एंड आज कल के जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें ये सब यूज़ हो रहा है, एंड ये 22 साल पहले मेकर्स ने कर दिया था। सो ये अच्छी बात है कि पुरानी चीज़ों को भी जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, पुरानी क्रिएटर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, एंड उस टाइम पर इसे कितना क्रिटिसिज्म मिला था कि यार ये कितना बोरिंग है। तब जो पोस्टर्स होते थे वो एकदम चटक होते थे, बोल्ड टाइपोग्राफी के साथ होते थे, वहीं पर स्वदेश ने एक मिनिमल एंड एक एस्थेटिक जो है पोस्टर हमें दिया था, दैट्स ग्रेट। सो मुझे ऐसा लगता है अच्छा काम किसी भी टाइम पे किया जाए उसे मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है, उसे अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। वैसे आप भी मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं 3311063 पर अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज के। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
1: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन नमस्कार मैं हूँ आर माधवन आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास

0: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

भाई साहब नेटफ्लिक्स को कुछ तो हो गया है, मतलब नेटफ्लिक्स जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें अलग अलग जॉनर की जो है चीजें थी, ये हम देसीज के लिए एक अलग लेवल का फनी कंटेंट जो है वो लेकर आया है। या वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, नेटफ्लिक्स जो है वो हम सबका यू नो गो टू ओटीटी प्लेटफॉर्म रहा है, एंड क्योंकि वीकेंड अभी अभी गया है, आपने भी आई एम श्योर बहुत सारे यू नो कमिंग सून वाली चीज़ें देखी होंगी नेटफ्लिक्स पे। सो नेटफ्लिक्स बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ आ रहा है। सबसे पहले तो भुवन बाम का ढिंडोरा जो है वो वापस आ रहा है, उसके बाद जाकिर भाई का पापा यार जो है वो भी हमें नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगा, समय रैना का इंडियाज़ गॉट लेटेंट आपके एपिसोड जो है वो आ ही रहे हैं हर वीक, एंड कपिल शर्मा शो जो है द ग्रेट कपिल शर्मा शो वो जो है आ रहा है अपने सीजन 5th के साथ, एंड एक और चुंबक नाम की जो सीरीज है वो भी आ रही है, एंड धमाल 4 जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। सो इन शॉर्ट अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो सीरियस एंड यू नो बहुत हैवी कंटेंट के साथ ऐसे लाइट हार्टेड कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो ये बात मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बिकॉज आई एम अ गर्ली दैट प्रेफर कॉमेडी ओवर एनीथिंग। मतलब आप मुझे कॉमेडी किसी भी चीज़ के साथ दिखा दो, चाहे रोमांटिक हो, एक्शन हो, मुझे चलेगा, बस मुझे कॉमेडी चाहिए होती है, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी सोचने के लिए है कि अगर मैं किसी चीज़ पे अपना टाइम और एफर्ट डाल रही हूँ तो वो फ़नी होना चाहिए। इसीलिए आपकी लाइफ को फ़नी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ज़बरदस्त इवनिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

ऑफ कोर्स देखिए सितंबर के भी 11 दिन जो है वो जा चुके हैं एंड मतलब हम आधे से ज्यादा 2026 को पार कर चुके हैं. कंग्रेचुलेशन. वेलकम जी 106.3 रेडियो आरएफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है. अब देखिए यार हम सब ने सोचा था कि 2026 को अपना सेकेंड वर्जन वाला ईयर बनाएंगे मतलब इस ईयर में तो कम बैक होके रहेगा. लेकिन हमारा कम बैक हो या ना हो बहुत सारी मूवी के सीक्वल्स का कम बैक जरूर हुआ था यानी मूवीज का कम बैक जरूर हुआ था सीक्वल्स के तौर पर. सो अगर मैं कुछ मूवीज मेंशन करना चाहूँ जिनके सीक्वल जो है वो हमने इस साल एंजॉय किए सो वो था मिर्ज़ापुर द मूवी. ऑफ कोर्स अभी लॉन्च हुई है सो वो बेसिकली सीक्वल नहीं था लेकिन उसका एक अलग वर्जन हमें देखने को मिला. एंड आवारापन 2 एक बहुत ही मेजर कम बैक था इमरान हाशमी जी का. एंड हॉन्टेड 3D हमने इंजॉय करी. उसके बाद कॉकटेल का सीक्वल हमने इंजॉय किया. पति पत्नी और वो दो मेजर सक्सेस तो नहीं थी लेकिन फिर भी पार्ट 2 था. एंड मर्दानी 3 हमने जो है वो देखी. वेदा 2 जो है वो हमने देखी एंड बॉर्डर 2 भी हमने देखी. सो बेसिकली बहुत सारी अमेजिंग मूवीज़ का जो है पार्ट 2 या पार्ट 3 सीक्वल्स बेसिकली हमने इंजॉय किया. एंड मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में भी ऐसा जारी रहने वाला है बिकॉज अब नए कंटेंट को पुराने नाम से जो है बेचा जा रहा है मार्केट किया जा रहा है बेसिकली. सो ठीक है लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो. एंड अगर मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रही हूँ तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना बिकॉज मुझे जो है नींद बहुत आ रही है. वैसे अगर आपके पास नींद भगाने का कोई तरीका है सो बताइए मुझे 3311063 पर. आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अचानक से उस खाने को जिसको आपने ऑर्डर किया है उसकी लोकेशन गायब हो जाए एंड फिर आप उस लोकेशन को ट्रैक करके देखें तो कोई और आपका खाना खा रहा हो? और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि आप कतर में रहते हैं, कतर में ऐसा नहीं होता है पर इंडिया में ऐसा हुआ है। यस, कभी कभार ऐसा हो जाता है। सो इंडिया में एक इंसान ने जो है अपना खाना ऑर्डर किया एंड ऑर्डर करने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था उनका ऑर्डर डिलीवर होने का। बहुत देर तक जो है वो एक ही जगह पर लोकेशन दिखा रहा था उस खाने की, उस डिलीवरी एजेंट की एंड उसके बाद जब बहुत देर तक खाना नहीं आया एंड उसके बाद ऑर्डर कैंसिल जैसी जो है सिचुएशन आ गई थी, तब जाकर जो है उस लोकेशन पर जब उस लड़के ने देखा तो पता चला कि दो लोग जो है बैठकर उसका खाना एंजॉय कर रहे थे। ये देखो ऐसे बहुत कम होता है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये जो है सच में हुआ है बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जो है काफ़ी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं एंड पहले वो खुद ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है एंड फिर वीडियो बनाते हैं एंड फिर बहुत सारे व्यूज़ ले लेते हैं। सो आजकल जो है काफ़ी मुश्किल हो गया है रियलिटी में और क्या जो है फिल्म किया जा रहा है उसमें। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि ऐसा ना ही हुआ हो किसी के साथ। बाकी अम्यूजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो पिता।

0: क्या आप भी मेरे जैसे ही हो जो सिर्फ मूवीज को देखता है और भूल जाता है, उनके पीछे का मीनिंग कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करता? क्योंकि मुझे लगता है यार, लाइफ में ना ज्ञान देने वाले लोग बहुत है, अब मूवी से भी ज्ञान लेने लग गए तो फिर एंटरटेनमेंट जो है वो कहाँ से मिलेगा। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाई है। अब देखो यार, वैसे तो मैं मूवीज को ज्यादा डीपली जो है नहीं देखती, मतलब मैं उन्हें देखती हूँ, उनके पीछे का मैसेज समझती हूँ और कुछ चीजों पर फोकस करती हूँ एंड थोड़ी देर बाद भूल जाती हूँ। लेकिन एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया है और वो है वेक अप सिड। हाँ जी, मतलब रणबीर कपूर की शुरुआती मूवीज में से एक, लेकिन बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेज में से भी एक। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे हिडन मैसेजेस थे जो आपको खुद को बार बार रिमाइंड करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपको बता दूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वेक अप सिड देखें तो आपको ये सब रियलाइज हो। सबसे पहली चीज जो मैंने वेक अप सिड से सीखी है वो है नेवर सेटल फॉर लेस। मतलब कभी भी ना आप लाइफ में जो है रुक मत जाना यार, कि हाँ आप बहुत मिल गया है, वरना आपकी लाइफ में आगे कुछ गोल ही नहीं रहेगा। सो अपना करियर, अपनी इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कभी आप ये मत सोचना कि यार बस इससे ज़्यादा तो और क्या ही मांगू। मांगो और उसके लिए मेहनत करो, मिलेगा। उसके बाद कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के आई, मेरे पास मेरी फैमिली मेरे साथ थी, एक बहुत ही स्टेबल करियर था, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं जो है इस मूवी से थोड़ा एक्स्ट्रा रिलेट कर पाती हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो अपने ड्रीम्स को बहुत सीरियसली लो, ये बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले पॉइंट की तरह, लेकिन ड्रीम्स को सीरियसली लो। कोई भी ड्रीम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, सब सेम होते हैं, ओके। एंड क्लियर रहना पड़ता है बेसिकली अपनी लाइफ में कि आपको क्या चाहिए, आप जो करना चाहते हैं आप उसके लिए मेहनत कीजिए ना, आपसे वो हो जाएगा। आई नो थोड़ी सी प्रीची साउंड कर रही होंगी मैं, आपको लग रहा होगा कि यार कशिश तुम भी वही कर रही हो जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको एक मूवी के डीप थॉट्स के बारे में बता रही हूँ कि एक मूवी सिर्फ गाने और डायलॉग्स का कंपाइलेशन नहीं होता है, वो बहुत सारे अलग अलग थॉट्स का कंपाइलेशन होता है। सो एक बार वेक अप सिड देखो तो इन चीजों पर जरूर गौर करना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Cool song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Ready?
3: Ready!
2: To learn!
3: Yes!
2: To play!
3: Absolutely!
2: To grow!
3: With Maserati!
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
4: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
5: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

यार देखो, हम जो है घर के बने खाने को या घर की बनी चीजों को कितना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीज हमारे घर में बनी है उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कोशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, घर में बनी हुई चीज़ यानी अपनी अपने घर में ही नहीं, सिर्फ अपने शहर में अपनी कंट्री में बनी हुई चीज़ की भी वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज आप जानते हो कि यार खुद बनाइए तो यानी अच्छी चीज़ें ही यूज़ करी होंगी। सो कतर को जो है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री जो है वो मिलने वाला, यानी अब लोकली मेड कार्स और वैन्स जो है वो प्रोड्यूस होकर हमें मिलने वाली हैं दोहा में, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। 2028 से जो है वो इसकी स्टार्टिंग जो है वो मानी जा रही है, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि अब प्रोड्यूस यहीं पे होंगी एंड हमें बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मिल पाएंगे। मैं हूँ आपकी कशिश और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में स्टे ट्यून रही और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: चलता हूँ दुआओं में याद रखना। देखो गाती मैं भले ही अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपसे इल्तिजा बहुत प्यार से और बहुत दिल से ही कर रही हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे शो जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर मैंने कोशिश की आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने की। अब देखिए आज सैटरडे है, कल से वापस जो है ऑफिस की जद्दोजहद में हम लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना कि स्माइल करना बहुत जरूरी है। सो स्माइल कीजिए, खुश रहिए, फोटोज कीजिए, वीडियोज बनाइए एंड मुझे जो है वो आप अगर मिस करें सो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आपको सभी आरजेस मिल जाएंगे, तो वहां आकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को लाइक कर सकते हैं एंड अगर कुछ पर्सनली बात करनी हो तो 3311063 ये मेरा नंबर है, इस पर आप जब चाहे जो चाहे वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी जाते जाते वही कहना चाहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज,
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. Radio Olive. Geo Vindaa.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

ये मेरा पहला गाना है बॉलीवुड में. दिस इज कंपोज्ड बाय मिथुन शर्मा. लाइक लिटरली माय फर्स्ट सॉन्ग इन द इंडस्ट्री एज अ प्लेबैक सिंगर.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।